0: कौन सा ड्राइंग है? Angry. You can copy the last and call history 10 city property damage.
1: Copy.